भावार्थ दासबोध निरूपणकार पद्माकर देशपांडे भाग 147 दशक 10 समास 6 भ्रम निरूपण

0: जरा ठहरना भाई साहब.
1: What? Nonsense.
0: अरे रे रे रे रे. आप तो है मेम साहब, क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हूँ. जरा रुकिए मेम साहब.
2: यो शट अप.
0: माफ करना, आप तो है भाई साहब, क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हूँ.

लोगों को तमाशा ना दिखा, इतनी चढ़ाली जरा होश में आ, मुझे लगे तेरा भेजा घूम गया, चल फूल।

0: तक ऐसी झूठी है कहानी, तो फिर भी सच्ची जानी
1: ये जवानी
0: है। रुतम से तानी वो सामने है रानी, वो यही यही यही है जवानी।

0: कभी नहीं डरते,
1: एक दिन में आप बार मरते।
0: वो गाना हिंदुस्तानी और रिदम है भूटानी,
1: वो यही यही यही है जवानी
2: जवानी
0: रुत मस्तानी, वो सामने

0: ये दुनिया बनाई है किस बेरहम ने, बड़ा जुल्म देखा जमाने में हमने। वो रंगीन बचपन जो जाके न आया, जवानी ने आते ही दिल को जलाया। उलझती गई मेरी मंजिल की राहें, दिया मुझको धोखा मेरे हर कदम पे। उन्होंने जयपुर से फिल्म नगरी मुंबई में कदम रखा 1948 में। दिल में कुछ अरमान थे और पल पल कुछ कर गुजरने के लिए बेतहाशा सपने।
1: मैं पृथ्वीराज कपूर साहब, बड़े उर्दू अदब के वो भी बहुत ही शहदाई थे, उन्होंने मेरे वहाँ एक पोएम सुनी जो मजदूरों की हिमायत में थी, उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा लड़का राजू जो है वो एक पिक्चर बनाने वाला है बरसात, तो मैं उसे तलाश है नए राइटरों की, नए म्यूजिक डायरेक्टरों की, तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, तुम एक दिन पृथ्वी थिएटर पर आ जाओ। मैं थिएटर पर पहुँच गया एक दिन और उन्होंने मिलवा दिया कि भाई ये लड़का है जिसने रात को बहुत अच्छी पोइट्री सुनाई, रास्ता भाई उनका मियाँ बहुत तारीफ कर रहे थे पापा जी आपकी, तो तुम कुछ अपनी गैर फिल्मी शायरी सुनाओ, आशिकाना शायरी सुनाओ। मैं तो उसका शहदाई हूँ, मेरी पिक्चर भी आशिकाना है जिसका नाम है बरसात। मैंने बहुत सी पोएम उन्हें सुनाई, बहुत सी नज़में सुनाई, गज़लें सुनाई, गीत सुनाए। उनका भाई तू तो बहुत अच्छा कहते हो, हमारी तस्वीर को तो बिल्कुल यही रंग चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि हमारे दो म्यूजिक डायरेक्टर वो भी हम नए ले रहे हैं, शंकर और जयकिशन, उनकी धुनें हमने कुछ पास किए, कुछ सेलेक्शन किया है उनका, हमें बहुत अच्छी, उन पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये तो है, ये तो मैं कहीं यूज़ कर लूँगा, कहीं भी करता रहूँगा, क्योंकि ये धुने हैं। मैंने कहा आप धुने सुनवा दीजिए, उन्होंने वहीं मुझे धुने सुनवा दी, एक वो रेस्टोरेंट है अपने ओपेरा हाउस में, और उन्होंने वहीं धुने सुना दी, मुझे बहुत पसंद आई और सिचुएशन बता दिए, उस हिसाब से मैंने गाने लिखे। मैंने पहला गाना जो मेरा रिकॉर्ड हुआ है वो था जिया बेकरार।

0: मेरे पिताजी तो बहुत ही प्यारे इंसान थे, ऐसे इंसान जिनकी शायद अब रिप्लेसमेंट कभी कोई कर नहीं पाएगा। और शायर के हिसाब से उन्होंने कई गाने आप लोगों ने सुना होगा, लिखे हैं, लेकिन हमें ही पता है कि उस गाने में वो और क्या बताना चाहते थे। जैसे कि मेरे हुजूर में एक गाना था, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। इसका ये वाकया है कि हमारे डैडी जो पार्टियों में जाते थे तो उनका ये था कि खाना घर आके ही खाते थे, और मम्मी हमेशा उनके लिए रुका करती थी, और बेचारी खिड़की पे सुबह के 3-4 बजे तक इंतज़ार करती थी, और जब डैडी आते थे तब दोनों ही साथ में खाते थे। इस वाक्य को डैडी ने बहुत टाइम देखा था, उससे मुतासिर होके ये गाना लिखा था, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा।
1: वो देखो मुझसे।

0: कज़ा।
1: कज़ा मौत को कहते हैं। सरदार जी आ जाओ जल्दी, आपकी वेट कर रहा था, जल्दी आ जाओ, मूड ही नहीं बन रहा था आपके बगैर। इधर आ जाओ। तालियां।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,